0: ya es víbora.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।

0: बिल्कुल सही गल, बिल्कुल।
1: चलो
0: शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों तुसी भी जुड़ियो साडे नाल, 647-367-5353 साडे स्टूडियो दा नंबर है। ते साडे इस प्रोग्राम दे मेन स्पॉन्सर्ड ब्रम्पटन कैश एंड कैरी। तुसी लेनी होवे कोई ग्रोसरी, तुसी कोई लेना होवे डिस्पोजेबल समान।

0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुने हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने करन लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किस भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478 905-799-1478 7994 1478 Royal Auto Center.

0: Sweets in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: हाँ जी 2825 जी भाई जी
2: हाँ जी नवी सत्य जी
1: कैसे हो
2: है बढ़िया बढ़िया क्या बात है
1: की हो गया
2: मैं क्या बदर पति भाई ने गाना अपने क्या के गया लौंड ले
1: हाँ भाई जी रंग बन गए हैं
2: हाँ रंग बन गए थे मतलब इधरले पत्तन हो जाएगा डिपार्टमेंट से शुरू कर दियो तो बहुत बढ़िया शाम संदूरी हो जाएगी
1: शाम वैसे आज थोड़ी सी है ठंडी गर्म कर दी है पूरी की नहीं शाम नू मना रहे हो
2: मैं तो कुछ नहीं काम तो आया अपने यार्ड नू जा रहे हैं ट्रेलर खड़ा करना ना
1: अच्छा
2: ते जावांगे घर फिर जाके नहावा नू वांगे जिद्दां वी आ
1: हां ते फिर
2: टीवी टीवी देख लो
1: बस टीवी देख के सार लेना काम है लॉन्ग वीकेंड है तुसी बस टीवी वो ही सीरियल देख के फिर सोना चलो मर्जी है थोड़ी जिंदगी च थोड़े फन शन भी कर रहा करो
2: चाहिए
1: और तुसी हुक्म करो कोई
2: अपने मैं भी अपने कहना चलो
1: बारह साहब का लगाना ला दो बारह साहब का जो कर रहे है बस हारी जांदे है हारी जांदे है ते अज मुंबई नू हार गए मेनू अज दो चार मैसेज आए कि भाजी देखो अपने बंदे ने की करता असी भी की करिए यार चलो मर्जी है ना दी 2865 हां जी भाई जी
3: मुंडा ना भुल भगत भाई भगत का मुंडा सिंगर जेड़ा मुंडा गीत लिखदा मुंडा
1: गीत
3: लिखदा
1: गीत लिखदा सी भगत भाई का ठीक है
3: हां जी मशहूर बहुत पूरा जी साडे अपने नेड़े ही उत्थे
1: मैं उस पिंड च गया बहुत ज्यादा आ
3: नहीं जी ओह तां फिर भूतां दा खूह भी उत्थे जी
1: अच्छा हैगा रिश्तेदार ने मैं काफी बार गया चलो सुनो एंजॉय करो थैंक यू भाई जी 6500 हेलो
4: हां जी नवी भाई की हाल है
1: वधिया जी किवें हो
4: करमजीत पुरी है भाई राइटर
1: अच्छा राइटर सी नहीं मैं ओ मेनू भुलेखे च पा गए मैं क्यों कहंदे वी ओ

श्री वाहे गुरु साहेबा जी, हर जेठ जड़न दा लोड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या, किसाना दे बाना, हर जेठ जड़न दा लोड़िया, जिस अगा सब निवाना।

मानक मोती नाम प्रभा उन लगा नाही साना रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोए जी कराना जो प्रभ कीते अपने से कहिया तन्ना आपन लिया जे मिला बिछड़ क्यों रवाना साधु संग प्रापते नानक रंग मणन हर जेठ नंगेला तिस तणिए जिसका भाग मथन साधु संग प्रापते नानक रंग मणन हर जेठ नंगेला तिस तणिए जिसका भाग मथन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगर सब निवान हर सज्जन दा बन लग्या

शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म्स अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416 930 1251 416 930 1251

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 905-459-5533
2: 905-459-5533
1: PNJ Spring Wheel Alignment।

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोले स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स

हर जेठ जड़न दा लुड़िया जिस अगा सब निवाना हर सज्जन दावन लग्या किसाना दे बाना हर जेठ जड़न दा लुड़िया जिस अगा सब निवाना हर सज्जन दावन लग्या किसान दे बाना।

0: एक्सपर्ट?
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोले स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो।

0: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
1: हां कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर तो दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

सुकास खूबसूरत, स्वेदा खूबसूरत, लोग खूबसूरत, मुनकर सिया चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन सुन रहे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरभउ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का पाठ रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। एक बार फिर तो सफर के उपर जिथे बहुत खूबसूरत पड़ा ने जिंदगी दे रोशनी जिते रस्ते दिखा रही है, तुसी चलते जा रहे हो। नवी चीज़ों वाल चलो, नवे युग जिहड़े शुरू हो चुके ने, नवी गलबात वाल, नवे भरोसे वाल चलना शुरू कर सकते हो। और इस समय तुसी एम 530 के उत्ते अमनदीप सिंह बैनीपाल दे नाल मुखातिब हो। तकरीबन जो तुहाडे नाल 15 साल प्लस का समा ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर दे विच मैनूं हो चुकिया, और हर रोज़ कुछ नवी गलबात जिथे पॉजिटिव एनर्जी की गल करदा हां, उत्थे हमेशा असी गल करते हैं चढ़दी कला निरभउ निरवैर, यानी कि मानसिक तौर दे उत्ते तुसी बहुत स्ट्रोंग होवो, ये मेरी दुआ हुंदी है। पर स्ट्रोंग होना, चलाक होना, क्लैवर होना ते इंटैलीजेंट होना, ये तीनों अलग अलग चीज़ां ने। ते क्लैवर होना कई बार खाई खोदी हुंदी है ते उहदे विच छाल मार दिंदे आप, ते कई बार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हुंदे उह सॉल्व कर लैंदे जो तुसी इंटैलीजेंट होने हो। सो जिंदगी च इंटैलीजेंट होवो। इंटैलीजेंसी कल्ली गूगल दे उत्ते नहीं पई कि गूगल ते प्रेस मार दिता ते लभ गई ते कर लिया। लिटल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, साधारण ते थोड़ी जानकारी रखना खतरनाक हुंदा, जो कि अज दे युग च हो रहा कि किसी ना गल करके तुसी नाले गूगल दब दिंदे हो कि फलाना शहर किवें आ, वो कहिंदे जी तां गया बस मर गया मुकर गया, दैन तुसी ओ तां मर गया मुकर गया। जिंदगी च मैं एक चीज़ सीखी है जी, प्रैक्टिकली तुसी किसी चीज़ नूं देखिया नहीं, उन्हों अजमाया नहीं, तो वह तुहाडा तजर्बा नहीं बन सकती। सो तजर्बा प्रैक्टिकल लाइफ है। दूसरा मैं देखिया कि खाली प्रॉफिट्स नूं बिजनेस नहीं कहिंदे, प्रॉफिट्स नूं कामयाबी नहीं कहिंदे, फेल होकर प्रॉफिट्स विच जाण नूं कामयाब इंसान कहिंदे ने। एक बार फिर तो बहुत सारे कामयाब इंसान मैंने सुन रहे हैं। स्टूडियोज़ नंबर 905-673-3936 स्टूडियोज़ के घड़ी देते सुनाओ की हाल चाल ने। उम्मीद करदा चढ़दी कला निरभउ निरवैर होंगे। फ्राइडे दी मॉर्निंग है, लोंग वीकेंड आ गया तुहाडी आवाज़ सुननी चाहुंदा, एक बार आ जाओ फिर सारे प्यारे, एक बार चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला कर दी आपां। 905-673-3337 लाइन खाली है, थोड़ी आवाज़ सुन नूं बड़ा रूह करती है, बड़ा चित करता है कि तुसी सारे मिलकर एक बार ये आवाज़ च गूंज देवो कि चढ़दी कला। तो वह चढ़दी कला का गुरप्रसाद है जिहड़ा, जिहड़ी वो ब्लैसिंग्स ने बहुत सारे ऐसे कन्ना च पैण जो वीक हो गए फील कर रहे सी, महसूस कर रहे सीगे, वीक है नहीं सीगे, सीगे वो भी उहदी चढ़दी कला का ही पार्ट, पर वो कमज़ोर फील कर रहे सी। यकीन मनो जो तुसी चढ़दी कला कहने हो ना, तो उदों एक गुरप्रसाद के तौर पर, प्रसाद के तौर के उत्ते बाकियों के कन्ना च गूंजता है। 905-673-3337 साढ़े स्टूडियोज के नंबर ने, और तुसी मैनू कॉल कर रहे हो तो थोड़ी आवाज़ मैं सुन रहा। 905-673-3337 चढ़दी कला के नाल अज्ज दे शो दा आगाज़ कर चुके हैं।

0: 0। 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है टू तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 9054526200।
0: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है टू तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 9054526200।
3: यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
4: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
7: रेडियो आवाज,
8: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।
9: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Last night you went out drinking and you did the right thing. You left the car at home. Thank you. But even though you slept, do you think you're okay to drive? If you drank a lot the night before, you could still be intoxicated. Only time, not a cold shower, a hot coffee, or a big meal can lower your blood alcohol concentration. Plan ahead for your night out and the next morning. You'll be helping to keep our roads safe. A message from SmartServe Ontario and Arrive Alive, Drive Sober.
4: 32, 55, 80, 98, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, Brampton TV and Appliances, 801 Bowway Drive near Chingozi. Call 905-450-2828. 905-450-2828.

नून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। अच्छा वादिया, उम्मीद करते हैं तो अड्डा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों ना जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण जी थोड़े लिए वतनों दूर पेश करेंगे, मनप्रीत जी इंडिया तो खबर पेश करेंगे, सुखी निजे साहब भी हाजिरी लाएंगे। सब तो पहला छतरी शाह रिपोर्ट हाजिर है। अज कानूनी तौर से 5:52 से सूर्य सिंह आया, 8:35 चले जाना मामा चांस। सवेरे सवेरे 4:37 आया, शाम 7:46 जाना, सारा दिन चक्कर कटता रहेगा। अज का तापमान 20 डिग्री तकरीबन, सारा दिन सूरज चमकेगा, इस नाइस वेदर टुडे। कल 24 डिग्री सूरज चमकेगा, संडे 24 डिग्री सूरज चमकेगा, मंडे 24 डिग्री सूरज चमकेगा, ट्यूजडे 26 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड बारिश पेगी, झखड़ झोले थंडरस्टॉर्म भी आने, बुधवार 21 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड बारिश पैण के आसार नजर आते हैं।

0: ना करें, अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
1: तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते।
5: ओ केड़े जंक्शन ते?
6: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
4: रात लगियां महफलां रे।
6: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: कनाडा विच 75+ लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपू लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो। 50+ टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा। ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा।
8: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो।
7: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज, शाही पनीर फ्राइज, मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल। अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepot.ca ते ऑर्डर करो।
8: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते franchisee@pizzadepot.ca ते आज ही अप्लाई करो। पिज़्ज़ा डिपू, स्वाद विच टॉप टॉपिंग्स नॉनस्टॉप।
9: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
10: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500।
11: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607. 647-822-9607.

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: 32, 55, 80.
2: 93.
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: वो काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते।
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
6: 530. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ 100 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਰਗਾ।

0: ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 30 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਿਟ ਪੇਰੋਲ, GST PST ਰਿਟਰਨ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-799-1777 ਜਾਂ ਆਓ 199 ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਸਵੀਟ ਨੰਬਰ 205, ਡਿਕਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।
1: ਕਰਨੀਸ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਰਵਿਸ, ਕਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ 905-789-1770।
2: दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोकी आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने।
3: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो, तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल संपर्क करो।
2: कॉल 416-457-3381, 416-453-3381।
3: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस, एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक, 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड, यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस, बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
2: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज, डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
3: हां, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो, अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381, 416-457-3381।

0: चक्कर लगाओ.
1: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स. बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट. मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की की रोटी दा. ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते. डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग ऑल्सो अवेलेबल. कॉल एट 9057948111. सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन.
0: दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स. डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आइलैंड से हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, ता कोमल ट्रैवल. इंडिया पंजाब ले डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वाले नु 905-238-7011 905-239-7711. कोमल ट्रैवल एंड टूर. ई तुसी अपने खुद दा रेडियो

बिजनेस नु प्रमोट करन ले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंग संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

संस्करणलाई देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुका है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਵਾਓ ਫਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਲ ਸਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਐਟ 416-725-2551